0: Tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
0: 105,5 Star FM.
2: Star Gear, Star Joget.
3: Sedikit nyentrik asai, asai, asai.
0: Star Gear.
4: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
5: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ,
4: ये कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
5: तो भुगतो।